يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.

ਦੀਨੇ ਸੇ ਇੱਥੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਕਰਮ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੱਗ

वजीर आजम शहबाज शरीफ की गजल कौम के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। वजीर आजम यूएन सेक्रेटरी जनरल 6 अक्टूबर से पाकिस्तान इंदो। पाकिस्तान माजी जी आमुन के क्याम लाए खिदमतों सरजाम देने लाए तैयार है। इतने में अमुन लाए हरमुज लंग में व्यापारी आजादी जरूरी है। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खिताब दौरान गयल कौमों के जनरल असेंबली जा आसमा केतरन ही मुल्क के नुमाइंदन जो वॉकआउट। नेतन्याहू खिताब शुरू कयो तो गयल कौमों के जनरल असेंबली जो अद का वधीक हाल खाली थी वयो। फलस्तीनी सदर अमेरिका का लागू पाबंदी फौरी तौर वापस वठण जो मुतालबो करे छो। इजलास के वीडियो लिंक से खिताब करे महमूद अब्बास चयो है तो इसराइल फलस्तीन के अवाम की नसुल कशी कर रो है। हमला अजा ताई जारी है। फलस्तीन की जबरदस्ती बेदखली नसुल कशी वाले जंग शदीद थी पी वे। हलांदे किनारे में गैरकानूनी कब्जो वाया पो वे। गजा जो अवाम कतुलाम तबाही बुख के मुंह दई रो है। हुसियुनि जे सऊदी शहर ताइफ ऐं यंब ते हमलनि जी कोशिश नाकाम। हुसियुनि पारां फायर कयल 6 बैलिस्टिक मिज़ाइल फज़ा में ई तबाह कया विया। सऊदी इतिहाद मौजूदु यमन मां हुसियुनि पारां फायर कयल 6 मिज़ाइल जी निशानदेही ते खेन फिज़ा में ई तबाह कयो वियो। तुर्की अलमालिकी चयो आहे त मिज़ाइल सां कंहिं बि क़िस्म जो नुक़सान नाहे थियो। सऊदी तेल कंपनी आरामको जे सरबराह चयो आहे त हुसियुनि जे हमलनि सबबि मुतासिर थियल तेल पाइपलाइन जे मरमत वारो कम बि जल्द मुकमल थी वेंदो। मालदीव के स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला पारा जी एच क्यू जो दौरों। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर से मुलाकात। आई एस पी आर मौजूद मुलाकात दौरान बतरफा लागापन इलाके अमन सलामती के ख्याल की देवट कई वही। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर चयो तो पाकिस्तान मालदीव से लागापन के अहमियत दियूं था। लागापा वधिक मजबूत बनाने लाय पुरजम आयू। मालदीव के स्पीकर पाकिस्तान के इलाके अमन इस्तकाम लाय किरदार की सराह कई। अफगान तालिबान के गुलस्तान सेक्टर तजारत की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्स की भरपूर जवाबी कार्रवाई में केतरा ही तालिबान मारजी वया। सिक्योरिटी जरियन मौजूद पाक अफगान सरहद से गुलस्तान सेक्टर वट सिक्योरिटी फोर्स ने अफगान तालिबान विच में वक्फे सा फायरिंग जो सिलसिलो जारी है। सरहदी इलाके में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स मुकम्मल तौर अलर्ट है। फोर्सिस जो दहशतगर्द खिलाफ केपी में कार्रवाई जारी। उत्तर वजीरिस्तान में फोर्सिस के ऑपरेशन दौरान 8 खारजी दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरियन मौजूद फोर्सिस कार्रवाई दौरान दहशतगर्दन के ठाकन के कामयाबी से तबाह कर हथियार हथ क्या वया। मस्तोंग में मारजी वल दहशतगर्दन में अफगान शहरी शामिल निकता। सिक्योरिटी जरियन मौजूद मस्तोंग में मारजी वल एक दहशतगर्द खलील अहमद वटा अफगान कार्ड और बे दहशतगर्द जुल्कार उर्फ अबू उमर वटा अफगान कुछ इदारे जे डी आई जो कार्ड मिलो। हुकूमत के पेट्रोलियम शयों के अघन में बीहर मामूली लात। पेट्रोल 84 पैसा डीजल 2.63 रुपया फी लीटर सस्तो। पेट्रोल जो नौग 398.98 रुपया डीजल जो नौग 412.12 रुपया फी लीटर थी वो। जारी कल नोटिफिकेशन मौजूद पेट्रोलियम शयों जहा नवा अघ 25 सितंबर ला होंगा। सियासी पार्टी लाइ सभी हदफ हासिल करण जरूरी ना है। सियासी पार्टियों जो कम मसलन की निशानदेही करण आवाम के पैगाम देना है। पेट्रोल के मसले से का भी सियासी पार्टी आवाज न उथारे रही है। कुछ महीना पहिरां माण्हुनि खे लेवी जे बारे में का बि ॼाण न हुई। असां समुझायो त लेवी जो पेट्रोल जे क़ीमत सां को बि तालुक न आहे। हाणे रोज़ानो लेवी जे ख़ात्मे जूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम रहमान लाहौर में कारकुन जे इजतमा खे ख़िताब कंदे चयो त आई पी पी ख़िलाफ़ संदन वजदोजहद सां आवाम खे रिलीफ मिलियो। हुकूमत खे आई पी पी सां ॻाल्हाइण सां 45 अरब जो फ़ाइदो थियो। हाणे जमायत इस्लामी जो ज़िक्र सॼे मुल्क में थी रहियो आहे। सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। टी वी सर्विस सां को फ़र्क़ु न पवंदो।
एमक्यूएमबी लसानियत के हवा ॾेई रही आहे। पाकिस्तान खे लसानियत हवाले थियण न ॾिनो वेंदो। सीनियर वज़ीर सजीद नामेमर चयो आहे त कराची में इंडस्ट्री एमक्यूएम जे हड़तालुनि सबबु बंदि थी। कराची ऑपरेशन जो हिसो रहंदड़ एस एच ओस खे चूंडे चूंडे मारियो वियो। एमक्यूएम खे हाणे ॿीहर बदमाशी वारी सियासत करण जी इजाज़त न ॾिनी वेंदी। कराची वारनि खे माज़ीअ जूं कहाणियूं न पर पाणी, बिजली, रोड ऐं रोज़गार घुर्जे। एम क्यू एम ते संगीन ॾोहनि जा सबूत आहिनि त अदालतुनि में पेश कया वञनि। सिंध असेंबली में मुख़ालिफ़ धुर अॻवान अली खुर्शेदी चयो आहे त शर्जील नामे माज़ीअ जे इल्ज़ामनि जी आड़ में हुकूमती नाकामियुनि तां ध्यानु हटाइण जी कोशिश करे रहियो आहे। सिंध मुशावरती काउंसिल नव सूबनि इंसान यूनिट बाबति बहस खे रद्द करे छॾियो। सिंध में मुकमिल हड़ताल करे समूरा दग बंदि करण जो चिताव। सिंधु दरिया जे निज़ाम ते गैरक़ानूनी किनालनि ऐं डैमुनि जी अॾावत फौरी रोकण जा मुतालबा। सिंध मुशावरती काउंसिल जे इजलास में सैयद ज़ैन शाह, सफदर अब्बासी, डॉक्टर नियाज़ कलाणी, नवाज़ ख़ान ऐं ॿियनि जी शिरकत। अॻवाण जो चवण आहे त वफ़ाक़ी सरकार नव सूबनि इंसान यूनिट बाबति जारी बहस खे ख़तमु कराए पाकिस्तान तारीख़ी वतननि ते ॿधल वफ़ाक़ आहे, जेको 1940 ऐं 1943 जे मुआहिदनि ऐं करारदादनि जी पस मंज़र में वजूद में आयो। जेकर नवनि सूबनि या इंतज़ाम यूनिटनि जे क़याम बाबति को गैरक़ानूनी फ़ैसिलो कयो वियो त सिंध मज़ामत कंदी ऐं पंजाब वेंदड़ रस्ता बंदि कंदी।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: वज़ीर-ए-आज़म जे न्यूयॉर्क में ईरानी सदर मसूद पज़ीशान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म खिते में जटादार अमुन इस्तेकाम ला चिकतान में घटताई सफारतकारी रबतन के जरूरी करार दई छो। मके दिफाई मुआदो कें खिलाफ ना है, उन ईरान के बेएतमाद में वरतो वो है। ईरान के अज भी इस्लामाबाद मुआदो कबूल है। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है इस्लामाबाद मुआदे से अमल थिए। सिविल एस्करी क्यादत गर्जी अमुन जो कोशिशों जारी रखी। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान ईरान ला पाकिस्तान के असूली सफारतकारी अमुन की कोशिश के सारा कई। अमेरिका ईरान इस्लामाबाद मुआदे तरफ वापस अचन। चीनी सदर अमेरिकी सदर से मुलाकात दौरान मुतालबो कयो। चीनी सदर उम्मीद जाहिर कई तो अमेरिका ईरान एक जामे मुआदे ताई भी पहुंचंदा जैमें एटमी मुआदे समेत बेन मामलों जो जिक्र हों। चीन ए अमेरिकी फौज सदाई जहारियत खिलाफ जंग विड़ी है। अचो तो गड़ी बिन्हीं मुल्क के अवाम के उम्मीदन से पूरा लहूँ ए जिम्मेवारी जो मुजाहरो क्यों ए गड़ी बेहतर दुनिया की तामीर क्यों। अमेरिका के दौरे से पौतल चीनी सदर जी व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कई। आलमी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मामलों के ख्याल की डे वट कई वही। डोनाल्ड ट्रंप चवाए तो अमेरिका ए चीन के सहकार का सवाए दुनिया के मसलन जो हल कढ़ मुश्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गड़ियल कौमन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वज़ीर आज़म है तो यूएन सेक्रेटरी जनरल 4 अक्टूबर से पाकिस्तान इंदो। पाकिस्तान माजी जी अमुन के क्याम लाए खिदमतू सरअंजाम लियन लाए तैयार है। खिते में अमुन लाए हरमज लंग में व्यापारी आज़ादी जरूरी है।
1: सोलर ए बैटरी से डायरेक्ट हले
2: सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ਕਰਨ ਜੇ ਰਾਜ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵਡੇਰੀ ਹੋਇਆ ਕਦੇ ਵਡੇਰੀ ਹੋਇਆ ਦੁਲੇ ਨਮਾ ਮੈਂ ਮੁਖ

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: पाण खे गोली हणी आपघात करे छॾियो। लतीफ़ाबाद नंबर 12 जे रहवासी 40 वरनि जे राहिल अबासी ज़िंदगीअ जो अंत आंदो आहे। वाकिए खां पोइ पुलिस पहुची लाश एडी एम्बुलेंस ज़रिए इस्पताल मुंतकिल कयो। वाकिए जा सबब मालूम न थी सघिया आहिनि।
1: सोलन आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

पाकिस्तान विचोभर में अमुन वारनि कोशिशनि खे आसान बणाइण लाइ भरपूर किरदार अदा करे रहियो आहे। कारोबार ऐं सीड़पकारीअ लाइ ख़िते में डिघे मुदे लाइ अमुन इंतिही अहम आहे। न्यूयॉर्क में सीड़पकारनि खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान जी मैशियत मुस्तहकम थियण बाद तरक़ी करे रही आहे। मुल्क में वॾे पैमाने ते सुधारा कया पिया वञनि। मैशियत खे डिजिटाइज़ करण, टेक्नोलॉजी ऐं ई गवर्नेंस ते कम तेज़ीअ सां जारी आहे। पाकिस्तान वटि ज़राइत, मैदनियात ऐं तवानाई समेत केतिरनि ई शोबनि में सीड़पकारी जा मौक़ा मौजूदु आहिनि। बंदरगाहनि ऐं बहरी जहाज़नि वारी सनत में बि सीड़पकारी जा मौक़ा मौजूदु आहिनि, जिन मां फ़ाइदो हासिल करे सघिजे थो। केपीके में गवर्नर राज ते मुशावरत थी आहे। केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त लॉन्ग मार्च बाबति पीटीआई का बि हिकमत अमली न आहे। पीटीआई वारा पाण गिरफ़्तारियूं ॾेई रहिया आहिनि। केपीके हुकूमत पुलिस खे टाइगर फोर्स बणाइण चाहे थी। पीटीआई वारा पाण फरार थी रहिया आहिनि। मके दिफ़ाई मुआदे तहत सऊदी अरब, पाकिस्तान ऐं तुर्की जे परॾेही वज़ीरनि जी मुलाक़ात। टिन्ही मुल्कनि जे सऊदी शहरनि ऐं मुआशी हंधनि ते हुसियुनि जे हमलनि जी मज़म्मत। मके दिफ़ाई मुआदे कमेटीज़ ऐं वर्किंग ग्रुप जे क़याम जो जाइज़ो वरितो वियो। ख़िते में जटादार अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़। बलूचिस्तान जे ज़िमन वारे इलाइक़े में अफ़गान जारियत ऐं दहशतगर्दनि जे दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम। फोर्स जी जवाबी कार्रवाई में केतिरा ई अफ़गान तालिबान ऐं दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि चिमन सेक्टर ते अफ़गान तालिबान रजीम जी जारियत वारी कोशिश खे नाकाम बणायो वियो। पाक फ़ौज जारियत कंदड़ अफ़गान तालिबान जे चेक पोस्टिस खे क्वाड कॉप्टर ऐं मार्क फायर करे तबाह करे छॾियो, जंहिंजे नतीजे में केतिरा ई अफ़गान तालिबान ऐं दहशतगर्द मारिजी विया। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी न्यूयॉर्क में गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल ऐं लुबनानी हमनसिब सां मुलाक़ात। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ गॾियल क़ौमनि में एंथोनी जे किरदार जे वाखाण कई ऐं फ़लस्तीन तकरार जे हल ते ज़ोर भरियो। लुबनानी वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़ कयो।

0: पुलिस मूजिब शाह लतीफ टाउन में फास्ट यूनिवर्सिटी जो ॾोहारियुनि सां मुक़ाबिलो थियो। मारिजी वियल ॾोहारी जे टीह वरनि जे रावल पुटु सरवत तौरु सुञाणप थी आहे। मुक़ाबले दौरान पुलिस अहलकार सलीम पुटु हज़रत ख़ान ज़ख़्मी थियो। हैदराबाद में सिक्योरिटी गार्ड मुबैन तौर पाण खे गोली हणी आबगाद करे छॾियो। लतीफ़ाबाद नंबर 12 जे रहवासी 40 वरनि जे राहिल अब्बासी ज़िंदगी जो अंतांदो। वाके खां पोइ पुलिस पहुची लाश एरी एम्बुलेंस ज़रिए अस्पताल मुंतकिल कयो। वाके जा सबब मालूम न थी सघिया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: से महके
1: मिले दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजर सानी करो जरा सी, कदर करो मेरी कला की, जाने वाले चले जाते हैं, किस्मतें ही तो काबू में नहीं आती, छाँव में धूप की तरह, जिस्म में रूह

पाकिस्तान विचोभर में अमुन वारन कोशिशन के आसान बनाने लाइ भरपूर किरदार अदा कर रो है। कारोबार ए सीड़पकारी लाइ खिते में डिघे मुद्दे लाइ अमुन इंतहाई अहम है। न्यूयॉर्क में सीड़पकार के खिताब कंदे वजीर आजम शहबाज शरीफ चाह तो पाकिस्तान की मैशियत मुस्तकम थे बाद तरक्की कर रही है। मुल्क में वे पैमाने से सुधारा क्या पाया वन मैशियत के डिजिटाइज कर टेक्नोलॉजी ए ई गवर्नेंस से कम तेजी से जारी है। पाकिस्तान व जरायत मैदनियात ए तवानाई समेत केतर ही शोबन में सीड़पकारी जहा मौकिया मौजूद है। बंदरगाह ए बहरी जहाजन वे सनत में भी सीड़पकारी जहा मौकिया मौजूद है जिनमा फायद हासिल कर सकते तो। केपीके में गवर्नर राज से मुशावरत आए। केपीके के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है तो लॉन्ग मार्च बाबत पीटीआई वट का भी हिकमत अमली ना है। पीटीआई वारा पान गिरफ्तारियों दे रहा है। केपीके हुकूमत पुलिस के टाइगर फोर्स बनाने चाहे थी। पीटीआई वारा पान फरार थी रहा है। मके दिफाई मुआहदे तहत सऊदी अरब पाकिस्तान ए तुर्किया में परदेही वजीर की मुलाकात टिन्हीं मुल्क के सऊदी शहर ए मुआशी हंधन ते हौसिन के हमलन की मजम्मत मके दिफाई मुआहदे कमेटीज ए वर्किंग ग्रुप के क्याम जो जायजो वरतो वो। खिते में जटादार अमुन लाइ कोशिशों जारी रखने तफाक़

केटीएन न्यूज राधन जे रिपोर्टर मुजफ्फर गोरड़ जे घर ते चढ़ाई खिलाफ कलम धणी ने वकीलन जो एहतजाज हैदराबाद में वकीलन पारा साफ ही मुजफ्फर गोरड़ जे घर ते पुलिस चढ़ाई खिलाफ एहतजाज कयो जिम्मेवारन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो मेयर ने साफ ही मुजफ्फर गोरड़ जे घर ते चढ़ाई खिलाफ एहतजाज कयो लाड़काने में लिंड

0: घरपुर इसरार तौर गोली लगन सबब फौत हैदरी थाने की हद मीरन शाह कॉलोनी के रहायशी पोहेत मुश्ताक करोड़ जो 7 साल जो मासूम पुट राबेल के घर में निंड दौरान गोली लगन पुलिस मूजिब गोली किथा आई कें फायर कई वाक़े की जांच कर रहा हूं। खैरपुर के सिविल अस्पताल में हाउस जॉब डॉक्टर्स जो मुजाहरो धरणो वजीफो दियण जो मुतालबो हाउस जॉब डॉक्टर्स मूजिब 3 महीने का पगारू न मिलने सबब परेशान आयो इंतजामिया परेशान कर छो है इख्तियारियों नोटिस वी पगारू जारी कराए मसला हल कन।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: पहजो शहर पहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
3: GAFM 90.8।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अजरक के रंगों से रंगी
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
3: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: इस्लामाबाद ॾांहुं ईंदड़ वेंदड़ समूरनि रस्तनि खे कंटेनर रखी बंदि कयो वियो। केपीके पंजाब खां ईंदड़ वेंदड़ मोटरवेज ते ट्रैफ़िक मुअतल। अटक पुल खे लोहे कोका ऐं कंटेनर रखी मुकमिल तौर ते बंदि कयो वियो। पंजाब जे बि मुख़्तलिफ़ शहरनि जे कंटेनर्स पहुचाया विया। मुख़्तलिफ़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो। केपीके में गवर्नर राज ते मुशावरत थी आहे। पीटीआई बिल लॉन्ग मार्च ख़त्म करण वारी आहे। केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुनी चयो आहे त लॉन्ग मार्च बाबति पीटीआई वटि का बि हिकमत अमली न आहे। पीटीआई वारा पाण खे गिरफ़्तारियूं ॾेई रहिया आहिनि। केपीके हुकूमत पुलिस खे टाइगर फोर्स बणाइण चाहे थी। पीटीआई वारा पाण फरार थी रहिया आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे त हिन भेरे फ़ैसिलाइतो जहिड़ो थींदो पीटीआई वरी कॾहिं बि इस्लामाबाद जो रुख न कंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जी न्यूयॉर्क में गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल ऐं लुबनानी हम मुनसिब सां मुलाक़ात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गॾियल क़ौमनि में एंटोनी गुतरेस जे गिरफ़्तार जी वाखाण कई ऐं फ़लस्तीन तकरार जे हल ते ज़ोर भरियो। लुबनानी वज़ीर आज़म सां मुलाक़ात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ॿिनि तरफ़नि लाॻापन खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़ कयो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग.
2: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हूसी हमलन बाद पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे आला फ़ौजी अमलदारनि जो इजलास तलब। सऊदी परडे॒ही वज़ारत मूजिबि टिन्ही मुल्कनि जा फ़ौजी अमलदार दिफ़ाई मुआहिदे तहत सऊदी अरब जे मदद करण वारे तरीक़नि ते गौर कंदा। मके दिफ़ाई मुआहिदे तहत सऊदी पाकिस्तान ऐं तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीरनि जी मुलाक़ात, टिन्ही मुल्कनि जे सऊदी शहरनि ऐं मुआशी हंधनि ते हूसियुनि जे हमलनि जी मज़म्मत, ख़िते में जटादार अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़।
1: When did you join army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just shown a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, that's saying, look, it's not working. We've just started.
0: परडे॒ही वज़ीर जो मके दिफ़ाई मुआहिदे ते तनक़ीद कंदड़नि खे जवाब। हाकान अमेरिका जे अॻोणे सफ़ीर जेम्स जेफरी खे मुख़ातिब थींदे चयो त गुज़िरियल 50 सालनि दौरान नेटो चार्टर जे इजतमाही दिफ़ा वारो आर्टिकल 5 घणा भेरा लागू थियो आहे। 50 सालनि जी तारीख़ में आर्टिकल 5 रुगो हिकु भेरो लागू थियो, पर केर बि उन खे कागज़ी शींहं नथो चई रहियो आहे। नए कलम थियल दिफ़ाई इतिहाद खां यमन जे 10 सालनि वारे तकरार जो फौरी हल करण जो मुतालबो मुनासिब वारो नाहे। पाकिस्तान विच ओभर में अमुन वारनि कोशिशनि खे आसान बणाइण लाइ भरपूर किरदार अदा करे रहियो आहे। कारोबार ऐं सीड़पकारीअ लाइ ख़िते में डिघे मुदे लाइ अमुन इंतिहाई अहम आहे। न्यूयॉर्क में सीड़पकारनि खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त पाकिस्तान जी मैशियत मुस्तहकम थियण बाद तरक़ी करे रही आहे। मुल्क में वॾे पैमाने ते सुधारा कया पिया वञनि। मैशियत खे डिजिटाइज करणु, टेक्नोलॉजी ऐं ई गवर्नेंस ते कमु तेज़ी सां जारी आहे। पाकिस्तान वटि ज़राइत मैदनियात ऐं तवानाई समेत केतिरनि ई शोबनि में सीड़पकारीअ जा मौक़ा मौजूदु आहिनि। बंदरगाहनि ऐं बहरी जहाज़नि वारे सनत में सीड़पकारीअ जा मौक़ा मौजूदु आहिनि, जिन मां फ़ाइदो हासिलु करे सघिजे थो।

इस्लामाबाद में ईंदड़ वींदड़ समूरनि रस्तनि खे कंटेनर रखी बंदि कयो वियो। केपी के ऐं पंजाब खां ईंदड़ वींदड़ मोटरवेज ते ट्रैफिक मुअतल। अटक पुल खे लोहे कोका ऐं कंटेनर रखी मुकमिल तौर ते बंदि कयो वियो। पंजाब जे बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में कंटेनर्स पहुचाया विया। मुख़्तलिफ़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो। केपीके में गवर्नर राज ते मुशावरत थी आहे। पीटीआई बि लॉन्ग मार्च ख़त्म करण वारी आहे। केपीके जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त लॉन्ग मार्च बाबति पीटीआई वटि का बि हिकमत अमली न आहे। पीटीआई वारा पाण गिरफ़्तारियूं ॾेई रहिया आहिनि। केपीके हुकूमत पुलिस खे टाइगर फोर्स बणाइण चाहे थी। पीटीआई वारा पाण फरार थी रहिया आहिनि। दिफ़ा वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ़ चयो आहे त हुन भेरे फैसलाइती झेड़ो थींदो। पीटीआई वरी कॾहिं बि इस्लामाबाद जो रुख न कंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जे न्यूयॉर्क में गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल ऐं लुबनानी हम मुनसिब सां मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गॾियल क़ौमनि में एंटोनी गुतरेस जे किरदार जी वाखाण कई ऐं फ़लस्तीन तकरार जे हल ते ज़ोर भरियो। लुबनानी वज़ीर आज़म सां मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि खे हथी ॾियण ते इतफ़ाक़ कयो। ईरान अमेरिका सां जंग जारी रखण नथो चाहे। हाणे जंग ख़त्म करण जो फ़ैसिलो अमेरिका खे करणो आहे। ईरानी सदर मसूद पज़ीशान चयो आहे त जेकॾहिं इख़्तिलाफ़ ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थी सघनि था त हिक ॿिए खे क़तल करण जी ज़रूरत न आहे। अमेरिकी हुकूमत आलमी कानूननि तहत मुआदो करणु चाहे थी त तहरान तयारु आहे। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त जेकॾहिं अमेरिका कुझु शर्तनि ते अमल करे त अबना हर्मुस खे 7 ॾींहनि में खोलियो वेंदो। बलूचिस्तान खां ईरान फरार थींदड़ दहशतगर्दनि जी कोशिश नाकाम। फोर्सिस जी कार्रवाई दौरान हिंदुस्तानी फितने जो हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि केस में हिंदुस्तानी फितने जा वाघेल दहशत

गर्दन जे चुरपुर जो पतो लगाइण बाद कार्रवाई कई वई। सिमन सेक्टर में अफगान जारियत ऐं दहशतगर्दनि जे दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम। फोर्सिस जी जवाबी कार्रवाई में केतिरा ई अफगान तालिबान ऐं दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिबि अफगान तालिबान रजीम जी जारियत वारी कोशिश खे नाकाम बणायो वियो। अफगान तालिबान जे चेक पोस्टिस खे क्वाड कॉप्टर ऐं मार्टर फायर करे तबाह करे छॾियो। रादण जे रिपोर्टर मुज़फ्फर गोरड़ जे घर ते चढ़ाई ख़िलाफ़ कलम धणियनि ऐं वकील सरापा एहतजाज। हैदराबाद में वकीलनि पारां साफ़ी मुज़फ्फर गोरड़ जे घर ते पुलिस चढ़ाई ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। मेहर फुलजी स्टेशन फरीदाबाद में कलम धणियुनि जो एहतजाज, साफ़ी जे घर ते चढ़ाई कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो।

0: सोलर है।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कहाँ हो यार? मैं कब से तैयार बैठी हुई हूँ, तुम हमेशा लेट कर देते हो यार।
1: मैं नहीं आ सकता जन्नत।
0: क्यों?
1: मैं अभी शादी नहीं करना चाहता।
0: व्हाट? तुम्हीं ने तो कहा था।
1: झूठ कहा था।

0: तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

यदल सतार भयो चवे। शामराद मिदरी खास फरमाश ऐं दिलमुराद मिदरी खास फरमाश ऐं मुदसर मिदरी शहर सिबिका।

हुसी हमलन बाद पाकिस्तान सऊदी अरब ऐं तुर्किया जे आला फ़ौजी अमलदारनि जो इजलास तलब सऊदी परदेही वज़ारत मूजिबि टिन्ही मुल्कनि जा फ़ौजी अमलदार दिफ़ाई मुआहिदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण वारनि तरीक़नि ते गौर कंदा। मके दिफ़ाई मुआहिदे तहत सऊदी पाकिस्तान ऐं तुर्किया जे परदेही वज़ीरनि जी मुलाक़ात टिन्ही मुल्कनि जे सऊदी शहरनि ऐं मुआशी हंधनि ते हुसियुनि जे हमलनि जी मज़म्मत ख़िते में जटादार अमुन लाइ कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़।

इस्लामाबाद ईंदड़ वींदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद कयो वयो। केपी के पंजाब का ईंदड़ वींदड़ मोटरवेज से ट्रैफिक मुअत्तल थी वही। अटक पुल के लोहे कोका ए कंटेनर रखी मुकम्मिल तौर से बंद कयो वयो। पंजाब के भी मुख्तलिफ शहर में कंटेनर्स पहुंचाया वया, मुख्तलिफ रोडन के बंद कयो वींदो।

पीटीआई जी सियासी कमेटीअ जो अहम इजलास पिशावर में तलब सीनियर अॻवाननि जी सदारत हेठि थींदड़ इजलास में लॉन्ग मार्च बाबति अहम फ़ैसिलो कयो वेंदो। शौकत यूसुफ़ज़ई चयो आहे त हिन भेरे लॉन्ग मार्च कुझु हासिल करण खां सवाइ ख़त्म न थींदो। मार्च बाबति फ़ैसिलो अञा ताईं हतमी आहे।

ईरान अमेरिका सां जंग जारी रखण नथो चाहे, हाणे जंग ख़तम करण जो फ़ैसिलो आहे। अमेरिका खे करणो आहे। ईरान सदर मसूद पज़ेशियान चयो आहे त जेकॾहिं इख़्तिलाफ़कारियुनि ज़रिए हल थी सघनि था त हिक ॿिए खे क़तल करण जी ज़रूरत नाहे। अमेरिकी हुकूमत आलमी कानूननि तहत मुआदो करण चाहे थी त तेहरान तयार आहे। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त जेकॾहिं अमेरिका कुझु शर्तनि ते अमल करे त आबनार हुर्मुज़ खे 7 ॾींहनि में खोलियो वेंदो। बलूचिस्तान खां ईरान फरार थींदड़ दहशतगर्दनि जी कोशिश नाकाम। फोर्सेज जी कार्रवाई दौरान हिंदुस्तानी फितने जो हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि केस में हिंदुस्तानी फितने जा वाघेल दहशतगर्दनि जी चुरपुर जो पतो लॻाइण बाद कार्रवाई कई वई। चिमन सेक्टर में अफ़गान जारियत ऐं दहशतगर्दनि जे दाख़िल थियण जी कोशिश नाकाम। फोर्सेज जी जवाबी कार्रवाई में केतिरा ई अफ़गान तालिबान ऐं दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि अफ़गान तालिबान रजीम जी जारियत वारी कोशिश खे नाकाम बणायो वियो। अफ़गान तालिबान जे चेक पोस्ट खे क्वार ऐं मार्टर फायर करे तबाह करे छॾियो। सिंध हुकूमत पारां कूड़नि ख़बरनि जी रोकथाम लाइ NCCIA खां मदद वठण जो फ़ैसिलो। सीनियर वज़ीर शर्जी निनामेमर जी सारत हेठि इतलाउ खाते जो इजलास। समूरनि शोबनि जे डायरेक्टर

0: जाति में बारण बिरादरी जे बिन धुरिन में झेड़ो नौजवान कतल यूसी बारण आबाद में बिन धुरिन में झेड़ो थे फायरिंग में नौजवान अलारे नो बारण मारजी वयो धुरिन ने छिकतार तेज थी वई आहे नौशेरो फिरोज में बाईपास वट हथियारबंदन जी फायरिंग औरत कतल थी वई आहे संदस मुड़ुस जख्मी थी पियो आहे हथियारबंदन जी फायरिंग में यासीन चांडियो मारजी वयो आहे संदस मुड़ुस अब्दुल रज़ाक चांडियो जख्मी थियो आहे वारसन मूजिब ज़ाल जख्मी थी पई आहे ऐं लाड़काणे जा रहवासी आहियूं कुझु धुरिन सां तकरार हलंदड़ आहे जन हमिलो कयो आहे झोल में संजोरो थाणे जो अॻोणो एस एच ओ वॾो मुंशी ऐं सब इंस्पेक्टर गिरफ़्तार एफ आई ए हवाले सुप्रीम कोर्ट में अपील रद्द थियण ते अॻोणे एस एच ओ संजोरो रहम हुसैन ऐं ॿियनि खे गिरफ़्तार करे एफ आई ए हवाले कयो वियो संजोरो थाणे जे वॾे मुंशी आसिफ़ ऐं सब इंस्पेक्टर अली हसन खे बि गिरफ़्तार कयो वियो सुप्रीम कोर्ट मां ज़मानत रद्द थियण खां पोइ अॻोणे एस एच ओ ऐं ॿियनि अहलकारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो एफ आई ए हवाले कयो वियो खंबट में राज़ी देरो शहर ऐं भरपासे में वधंदड़ बदअमनी ख़िलाफ़ शहरनि जो राज़ी देरो खां अगड़ा ताईं प्यादल मार्च अॻवाणनि चयो आहे त राज़ी देरो ऐं अगड़ा में बदअमनी उरूज ते पहुची वई आहे फुरूं धाड़ा मामूल बणिजी विया आहिनि पुलिस अमुन कराइण में नाकाम आहे डी आई जी सखर ऐं एस एस पी अमुन बहाल कराइनि मेहड़ में बुनियादी मसला हल न थियण ख़िलाफ़ ऐं साफ़ पाणीअ जी फराहमीअ लाइ शहरनि जो एहतजाज डी जे डी ए पी टी आई क़ौमी अवामी तहरीक ऐं ॿियनि पार्टियुनि पारां दुआ चौक खां घंटा घर ताईं रैली कढी वई आहे अॻवाणनि चयो आहे त शहर में गंदगीअ जो आज़ार आहे रोड रस्ता तबाह आहिनि हुकूमत मसला हल न कया त एहतजाज जारी रखियो वेंदो ऐं पनो आकिल में बदमनी ऐं चोरी वारनि वाकियनि ख़िलाफ़ ॻोठाणनि जो एहतजाज ॻोठाणनि चयो आहे त फसुल में पाणी ॾियण वियासीं त जवाबदार मोटर साइकिल चोरी करे विया बदमनी चोट चढ़ी वई आहे ॾींहुं ॾिठे जो चोरियूं मामूल बणिजी वियूं आहिनि पुलिस बदमनीअ ते ज़ाब्तो आणे
1: सोलर ऐं बैटरी ते
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: सिंध के माथे का झूमर
4: जी एफ एम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध की

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ITI वारा पान फरार थी रहा हैं दिफा वारे वजीर ख्वाजा आसिफ सेवा है त हेना भेरे फर्स्ट लाइ तो जड़ो थींदो पीटीआई वरी करे इस्लामाबाद जो रुख न कंदी

इस्लामाबाद खां ईंदड़ वेंदड़ समूरनि रस्तनि खे कंटेनर रखी बंदि कयो वियो। केपीअ पंजाब खां ईंदड़ वेंदड़ मोटर वेस ते ट्रैफिक मुअतल, अटक पुल खे लोही कोका ऐं कंटेनर रखी मुकमल तौर ते बंदि कयो वियो। पंजाब जे बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में कंटेनर्स पहुचाया विया, मुख़्तलिफ़ रोडनि खे बंदि कयो वेंदो।

0: वेलकम बैक ट्रिब्यूट टू जलाल चांडियो. बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समाथों की नजर किया. ए नख तू अखणियो ये राज पत्नी क्या होगा आगे में आगे आगे पता नहीं क्या था. एनीवे खैर आपका अपना अशफाक आ चुका है आपके साथ आपके अपने शो आई लव यू ऑल में. हम लेते हैं शो की पहली कॉल. देखते हैं हमारे साथ लाइन चैन पे कौन आ चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: जी जनाब इरफान थे वो आई थिंक पहली कॉल पर आ चुके हैं हमारे साथ. क्या लक है आपका इरफान. क्या बात है क्या बात है जबरदस्त. और फिर बाकी जो है लिस्टर को क्या तालियां बजाते रहेंगे.
1: यार हमें भी सुनिए ना.
0: आपको सुनते रहते हैं हम आपको बहुत ज्यादा टाइम देते हैं.
1: बर्दाश्त करें ना यार. आप बर्दाश्त करेंगे लोग भी बर्दाश्त करेंगे.
0: हम आपसे बिल्कुल
1: खफा होंगे तो लोग तो पहले ही खफा है मुझसे.
0: नहीं भाई नहीं हम आपसे बिल्कुल खफा नहीं होते बल्कि हम आपसे क्या हम किसी से भी खफा नहीं होते हैं. हम सारे दोस्त हैं मतलब आप जितने भी लिस्टर्स हैं ना मेरे लिए काबिल एहतराम है. हाँ क्यों यार क्या हो गया. मैंने कभी आपको कुछ कहा.
1: सोचना पड़ेगा.
0: हाँ देख ले. और इरफान बताओ ये हाल चाल कैसे हैं आपके और क्या हो रहा है जिंदगी में.
1: पसीना आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और ठीक है.
0: अच्छा पसीना तो मुझे भी आ रहा है क्योंकि इस वक्त 39 सेंटीग्रेड चल रहा है शक्कर का टेम्परेचर.
1: अच्छा भाई बहुत सारी बातें आपसे करनी है लेकिन मैं भूल जाता हूँ. पता है आपको
0: बहुत अच्छी बात है क्या भूल जाते.
1: पिछली बार आपने 11 सितंबर पे शो किया
0: जी
1: और मेरी 12 सितंबर पे बर्थडे थी.
0: ओए होए मैं भूल गया हूँ.
1: अपने आप को आपको चोर कह कह के चला गया फिर.
0: आप जमाने के पीछे लग गए और अपनी सारी बातें भूल गए.
1: अपने आप को भूल दिया तो वो भी भूल गया.
0: चलिए कोई बात नहीं लेट आए कोई मसला नहीं. आपकी 11 सितंबर या 12 सितंबर को बर्थडे थी. तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू इरफान अली थेबू. हमारी तरफ से हमारे तमाम लिसनर की तरफ से आप हजारों साल जिए और हमेशा आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली आए
1: इंशाल्लाह. अब लिसनर्स मैं आपको बता रहा हूँ अगर अगली बार अशफाक भाई खुद याद ना करे तो फिर जुर्माना ऊपर लगेगा.
0: मुझे अपनी नहीं याद रहती मैं आपकी क्या याद रखूंगा. मेरी मिसेज को हमेशा शिकायत रहती है हमारी बर्थडे भूल जाते होते हम लोग. बिल्कुल
1: अशफाक भाई आज थोड़ा सा जो स्पीकरों का वॉइस है ना जो लेवल है वो मुझे ठीक नहीं लग रही है कि एक पत्थर.
0: अच्छा क्यों. मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है. आपकी तरफ वॉइस सही नहीं आ रही है क्या.
1: आपका जो सॉन्ग चला था वो भी थोड़ा सा स्पीकर साफ नहीं थे और पहले ये मैं दूसरी स्टेशनों में देखता था कंप्लेन करता था लेकिन अब हमारी स्टेशन पत्थर में भी ये हो रहा है.
0: अच्छा चलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल अब तक क्लीन एंड क्लियर वॉइस पहुँचे.
1: ये जो लेवल होती है ना आवाज वाली स्पीकरों की ये शायद बढ़ गई है या कोई टेक्निकल.
0: ओके लेट्स सी लेट्स सी. मैं चेक करता हूँ. और बताइए
1: हो गए हैं ना शायद इसी का 2012-13 से चल रहे हैं.
0: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है बिल्कुल परफेक्ट है. हर चीज एकदम से ऑसम है बस थोड़ा सा लेवल का कभी कभी प्रॉब्लम में भी हो जाता है मुझसे. तो अच्छा ये
1: मैंने मजाक की.
0: नहीं नहीं इट्स ओके यार आप कह सकते हैं बातें कर सकते हैं बातें मुझसे.
1: हमारा स्टेशन है तो हम नहीं कहेंगे तो
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली. अच्छा इरफान ये बताओ कि अगर कभी तुम्हें किसी सिंगर के साथ बैठने का मौका मिले और कोई सॉन्ग उनसे सुनने का मौका मिले बराह रास्त तो तुम किस सिंगर के साथ तुम्हारी ख्वाहिश है कि मुझे मिले और मैं उसे इस गाने की फरमाइश करूं.
1: बाबर भाई मेरा पसंद
0: अशफाक भाई
1: जी जो मेरे जेन में थी मैं कहने वाला था कि मैंने कहा पहले मैं सिंगर का नाम लूं फिर आपको बताता हूं इसलिए बाबर भाई आ गया.
0: अच्छा बाबर भाई सिंगर हैं.
1: बाबर भाई के शो में मैं कॉल करता था ना और उसको कहता था कि आप अहमद मुगल सुनाए.
0: अच्छा।
1: तो वो मुझे कहता था ये ऐसे सॉन्ग ना सुने.
0: अच्छा।
1: फिर वो मुझे कहता था इरफान तू ॾाढो रोइंदो आहीं
0: अहमद मुगल इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ आवर कंट्री.
1: अच्छा भाई मैं जब छोटा था तो म्यूजिक से बिल्कुल भी प्यार नहीं था. मैं नाते और नवे थोड़े से सुनता था लेकिन और म्यूजिक नहीं सुनता था. जब मैंने अहमद मुगल सुना ना
0: जी जी
1: तो फिर मुझे बहुत म्यूजिक से प्यार हो गया.
0: आए, आए, आए,
1: और अशफाक भाई अहमद मुगल आप सुने ना जिस भी.
0: अरे मेरे फेवरेट सिंगर है वो यार.
1: बिल्कुल और हाँ. जिस सिंगर ने सॉन्ग सिंगिंग में आया है जो भी जिसने भी गाया है
0: हाँ.
1: उसने पहला सॉन्ग अच्छा नहीं गाया.
0: अच्छा लेकिन अहमद मुगल के बहुत सारे ट्रैक हैं जो मुझे हाँ. बहुत ज्यादा पसंद है. हिंद रात जी अंधेरे में सनम
1: आप मेरी पसंद का सॉन्ग.
0: शहर है बेकदरन जो.
1: बिल्कुल आप मेरी पसंद का सॉन्ग चलाएं. अहमद मुगल का पहला सॉन्ग है जो पहला उसने गाया था
0: अनमोला जानी आंखें. ये भी बहुत प्यारा गाना है.
1: ये भी नहीं छदे वे जिए तो सिटी रिवारा माइया मुझे चप्पन पे दुआ तो पूछा.
0: अच्छा तो आपको अब गाना कौन सुनना है वो बताएं.
1: यही सुनना है कि अहमद मुगल का जिंदगी का पहला सॉन्ग ये है
0: छदे वे.
1: छदे में जी तू फिटी वो आराम
0: ओके मैं प्ले करने की पूरा कोशिश करता हूँ।
1: अब आप सुने इसकी इश्ताक भाई टून, इसकी जो म्यूजिक होती है ना हाँ? कितनी साफ है जैसे कोई पुराना सिंगर है सदियों से गा रहा है, लेकिन इसका पहला सॉन्ग है।
0: अच्छा क्या बात है, अहमद मुगल बहुत वॉइस स्टाइल है और बहुत अच्छे हैं।
1: हाँ उसमें सकाफत के भी बहुत अच्छे सॉन्ग गाए हैं।
0: एग्जैक्टली
1: जो भी सॉन्ग गाता है वो बहुत अच्छा गाता है। मैं कहता हूँ कि कभी उसमें खराब कोई भी सॉन्ग नहीं गाया।
0: नहीं गाया। उनकी आवाज बहुत अच्छी है, उनकी आवाज बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब शहर में मुब्तला कर देती है उनकी आवाज मुझे बहुत पसंद है।
1: आजकल की म्यूजिक चल रही है कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं।
0: अच्छा उनका गाना थोड़ा सा मुझे बताए ना कौन सा वाला है जो आप सुनना चाह रहे हैं? छड़े वे जिन के तू या जानिब छड़े वे जिए तू
1: फिटी भी आराम।
0: अच्छा जी
1: देखें आप इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा।
0: चले ठीक है इंशाल्लाह।
1: कदे वहीं जिए तो फिटी भी आराम या मुझे चपन दे दुआ से दुशाम।
0: चले चले चले सही सही। किसके नाम करना चाहते हैं?
1: सबसे पहले बहुत दुखी सा हूँ आपके नाम करूँगा इंजॉय करेंगे इसको।
0: सही।
1: और उसके बाद कुछ दोस्त हैं सिस्टर मिसेस अली और सिस्टर दुआ खान फौजिया फरजाना राय कुमर मंताज कुमर हुसैन बशीर हाफिज गुलाम अहमद सांबल नजीर मंगीरो बच्चन अंबानी लुकमान चाचर अब्दुल्ला पंगवार और जो भी सुन रहे हैं सबको इरफान अली टेबो की तरफ से बहुत सारे सलाम और हुसैन बख्तियाल को भी बहुत सारे सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम इरफान, अपना बहुत सारा ख्याल रखना जानी। हमारे साथ इरफान अली थेबो जनाब और अब सेकंड कॉल लेने का टाइम आया चाहता है। हम लेंगे अपने शो की एक और कॉल लेंगे। हम आपका नंबर आपके गोश गुजार करते चले 03000113488 हमारा नंबर है, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जनाब अब चार मिनट बाकी हैं तो मैं क्यों ना ले लूं एक गाना का ब्रेक जो इरफान अली थेबो ने किया है गाने की फरमाइश, ताकि गाना भी चल जाए ब्रेक भी चल जाए और आपकी नेक्स्ट टाइम वापस आके आपकी कॉल्स भी ले ली जाए। तो आप इस गाने को एंजॉय कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। अब जो मैंने गाना चलाया पता नहीं वो वही है कि नहीं है, लेकिन चला लिया मैंने।

तव्हां जी स्किन डल ऐं रौनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं ग्लो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: ठीक है ठीक है ठीक है सिकंदर भाई, वो बताओ गानों के बुझो तवाजे मुझे शो में बिल्कुल बिल्कुल बुझाने का कहते ना करना चाहे वो कहो गानों बुझा चाहो था शमन जो अच्छा सॉरी वरी बुधायो मुझे
1: मुझे सुहारी सिंध ते जीअं तो सुझो भरे
0: मुझे सुहारी सिंध ते
1: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल
0: ओके आया गोलियों था कहीं जे नाले ते करना चाहे सिर्फ इरफान जे नाले करना चाहे था बस
1: हाँ हाँ हाँ इरफान जे नाले जल्दी ना मत बंगरे वाले
0: जी जी
1: बदल संपादना इरफान यानी सुबह से जाते मुझे मुसाफिर आवाज बनी तो सिकंदर के मत सलाम
0: आपका वालेकुम अस्सलाम सिकंदर भापा जो खास ख्याल रख जो आदाब थैंक यू हमारे साथ जनाब इरफान अली सॉरी सिकंदर अली शम्पानी इरफान भाई को उन्होंने गाना डेडिकेट किया है तो हम गाना भी आपको वो जरूर सुनवाएंगे लेकिन लेते हैं शो की एक और कॉल देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है अस्सलाम वालेकुम होई होई होई कॉल आने से पहले क्यों चली जाती है मुझे समझ नहीं आता है अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: हां जी केरे सा सबनी संगद हाँ जी बिल्कुल हाँ सिकंदर शंभानी हो हाँ बच्चा जवाहर शंभानी है गुड शाह चाल ठीक ठाक आयो मजे में आयो जबरदस्त जबरदस्त मजे में यो बुधायो त शमन जो गानो आदे चयो आ सिकंदर भा त कंहिंजे नाले तव्हां करणु चाहियो था जी जी कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो जी जी जी ठीक है थैंक यू सो मच जवार जवार भा थैंक यू थैंक यू अल्लाह हाफिज हमारे साथ है जवार भाई और जवार भाई को हम सुनवाते हैं बहुत प्यारा सा गाना मुझे सुहारी संदते इस गाने को सुनिए और बहुत सारा एंजॉय कीजिए

0: 5:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islami Lawyer.
2: It's time to commercial break.
1: Sharia compliant gold based finance. जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ

0: 264 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें. शराइत और जवाबित लागू है.
1: इन छोटे कदमों में कल के ख्वाब छुपे हैं और हर कदम एक नई

0: पोलियो वर्कर्स की हर दस्तक का जवाब दें और हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाएं।
1: आप सुन रहे हैं

0: थैंक यू थैंक यू। अच्छा कैंजी आवाज में हलाया, शर्मा सिंधी जी आवाज में हलाया, या वरी दीपा सहर जो एग्जैक्टली तमाम घणो सुठो गानो दीपा सहर जी वॉइस में कैंजे नाले ते करण चाहियो।
1: सर मुझे प्यारो दोस्त इरफान थेबो बच्चन शंडानिया सिकंदर शंडानिया मुझे प्यारो भाव जावेद बंगर बंगर जो सखर में इलाही सारो सलाम कर आबाद हूं डॉक्टर गुलाम दीपा
0: सखर
1: में
0: जी जी जी अली हसन बाबू भी रेगुलर लिसनर है अजकल नो कर सभी के सलाम थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भंगवार साहब थैंक यू सो मच थैंक यू जी जनाब अब्दुल्ला भंगवार साहब कह रहे थे कि मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है और जबरदस्त तरीके से जो है हवा भी चल रही है तो जनाब सर्दी की आमद आमद तो है ना तो हम चाहते हैं कि जल्दी से सर्दियां आ जाए ताकि गर्मियां भाग जाए। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी जनाब केर असन सबनी सांग गड
2: सजण चाचर को गलाना
0: के सजण चाचर छा हाल है सजण भाजो फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। सजण भाई केरे शहर का कॉल किया था मुखे सजन भाई ताजी आवाज कटजे थी तमा केड़े शहर का कॉल किया मुखा मुखे केड़ी जगह है हां हां सजन भाई
2: वो असज घर में क्या है
0: हां हां केड़ी केड़ी बधायो
2: तो नूरबाना दो आवाज आए तो वेदड़ की से मुखे टीमो वने तक
0: अदा केन जो गाना सॉरी
2: नूरबानो आवाज में
0: नूरबानो मां सर्च कयां थो इंशाल्लाह जीअं मूंखे मिली आदि या नूरबानो त मां ज़रूरु तव्हांजो गानो हलायां हा हा त कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो अदा अच्छा ऐं गानो गानो थोरो मूंखे गाए ॿुधायो ओके गुलाम सरवर सुमरो गानो मूंखे थोरो गाए ॿुधायो इहे अदा गानो मूंखे ॿुधायो ॿीहर ओके अदा त हली वियो सजण भाउ हली वियो ऐं सजण भाउ खे थोरी जल्दी हुई आई थिंक पर कोई ॻाल्हि नाहे तव्हां मूंखे कॉल करे सघो था 03000110188 ते तव्हां असांखे मैसेज करे सघो था ऐं पंहिंजी फरमाइशूं असां सां गॾु पूरी कराए सघो था। हाणे मौसम ज़रूरु चेंज थी रही आहे ऐं असांजी इहा ई दुआ आहे त जल्दी जल्दी मौसम चेंज थिए जीअं सर्दियूं अचनि सियारो अचे असां बि हिन सियारो जो जेको आहे मज़ो वठूं ऐं उस में वेहूं हाणे त उस बिल्कुलु बि असांखे सुठी नाहे लॻंदी बल्कि कंहिंखे बि सुठी नाहे लॻंदी छो त हर माण्हू चाहींदो आहे त थोरी छांव में वेहे थोरी थधिकार थिए त जीअं जेको आहे उनखे सुकून मिले। असां बि तव्हांखे सुकून ॾियण जी पूरी पूरी कोशिशि कयूं था। असां चाहियूं था त तव्हां जेको आहे असां सभिनी सां गॾु रहो ऐं अब्दुल रज़ाक कुंभार जो मैसेज शामिलु कयूं था। सॉन्ग ॿुधायो मारवाड़ी मिठी माण्हू न जाओ ॾेखी हली हली ओके थैंक यू सो मच जेको आहे अब्दुल रज़ाक कुंभार साहब तव्हांजी फरमाइश बि ज़रूरु पूरी कंदासीं। असां सभिनी सां गॾु आहे बचल शाह सां बचल शाम ऐं इनामुद्दीन जमाली ऐं हुन जो पुट बि हुन सां गॾु मूंखे ॿुधे थो महमूद जमाली महमूद ऐं इनाम साहब तव्हांजो तमामु घणो थैंक्स असांखे ॿुधो था ऐं असांजे शो खे इंजॉय कयो था तमामु घणो थो रायता आहियूं तव्हांजा तव्हां असांखे ॿुधंदा आहियो ऐं रेगुलर लिसनर आहियो ऐं नंढड़े खे प्यार ऐं तव्हांखे सलाम खोड़ सारा तव्हां मूंखे कॉल करे सघो था 03000110188 ते GFMHT नेटवर्क ते तव्हां इहो शो ॿुधो था ऐं जनाब जिते जिते मुंहिंजी आवाज़ वञी रही आहे उतां जे तमामु दोस्तनि खे मां इहो ई चवणु चाहींदुमि त तव्हां अगरि मूंखे ॿुधो था त पोइ देरि छाजी आहे असां तव्हांखे एतिरा प्लेटफॉर्म ॾिना आहिनि फेसबुक ते तव्हां मूंखे मैसेज कयो था करे सघो था GFMHT ते वञी करे उते असांजो प्रोग्राम जो नालो अचे थो उते वञी करे असांखे मैसेज कयो फोन कॉल कयो 03000110188 ते उन जे अलावा तव्हां मूंखे मैसेज बि करे सघो था जनाब 888 ते त देरि छाजी आहे तव्हां असांखे कॉल कयो मैसेज कयो सोशल साइट ते असांखे मैसेज कयो असां तव्हांजी शामिल शो कंदासीं जेको आहे तव्हांजी कॉल तव्हांजा मैसेजिस ऐं तव्हांजी डेडिकेशन सो गाइस सखर जो मौसम बि यकीनी तौर ते हींअर चेंज थींदो छो त हाणे सेप्टेंबर बि पंहिंजे पुॼाणे ते पहुचण वारो आहे ऐं जेको आहे जेको आहे अक्टूबर जेको आहे पंहिंजे पंहिंजा रंग ॾेखारींदो हाणे केतिरा ॾेखारींदो इहा त अलाह खे ख़बर पर हाणे असां तव्हांखे ॿुधायूं था अब्दुल्ला भगवान साहिब जी तमामु घणी प्यारी फरमाइश ते तमामु घणो प्यारो सॉन्ग आहे जॾहिं हिन दुनिया मां गुज़ारे वेंदासीं पर हुन खां वठूं था हुन खां पहिरीं हिकिड़ी कॉल। अस्सलाम वालेकुम। सागर भा कहिड़ा हाल चाल आहिनि ठीक ठाक आहियो
3: हा
0: सागर भा तव्हां उहो मोटरसाइकिल वारा सागर आहियो न वेरी गुड सागर भाई, कहड़ा हाल चाल अथव मोटरसाइकिलनि जो कमु कीअं थो हले तव्हांजो? सागर भाई, अॼु मूंखे कोई शेर ॿुधायो या कोई गानो ॿुधायो?
3: गानो ॿुधायां थो।
0: हा, गानो ॿुधायो।
3: पहले जाओ फिर जाने दो, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता हो मेरे हस्ती का सामान हो गए।
0: ग्रेट यार, जबरदस्त। तव्हांजी आवाज़ में हिकिड़ी मिठास आहे, हिकिड़ी अपनायत आहे ऐं हिकिड़ी कशिश आहे, तमामु घणो जबरदस्त। तव्हांजी सुठी वॉइस।
3: मित्रो,
0: हा हा,
3: आप तो नज़दीक थे, नज़दीक तर आते गए। आप तो नज़दीक थे, नज़दीक तर आते गए। पहले गुल फिर गुल बदन, फिर गुल बदाना
0: हो गए। रफ्ता रफ्ता हो मेरी हस्ती का सामा हो गए। वाओ यार, ग्रेट, क्लैपिंग फॉर सागर भाई। जबरदस्त यार, तव्हांजी आवाज़ में तमामु घणी प्यारी आहे, मिठास आहे। थैंक यू सो मच सागर भाई। हाणे जेको आहे अमां हलायां थो गानो, जॾहिं हिन दुनिया मां गुज़ारे वेंदासीं, अब्दुल्ला भंगवार साहिब जी इलाही फरमाइश ते, छो त लास्ट टाइम हिन जी फरमाइश पूरी कोन कई से। हाणे तव्हां इहो गानो कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? ठीकु ठीकु ठीकु। थैंक यू सागर भाई, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो, असां सां गॾु ईंदा रहिया करो। थैंक यू। हमारे साथ जनाब अब्दुल्ला, और सॉरी अब्दुल्ला भंगवार की फरमाइश हम प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ सागर भाई, बहुत ही सुरीले से सागर भाई। अब हम प्ले करते हैं आपके लिए बहुत प्यारा सा गाना, जदी ने दुनिया में गुजारे विंदासे। सुनिए, सुनते रहिए GFM ATH नेटवर्क से आपका अपना शो आई लव यू ऑल विद दर्श फाकनियाजी। इसके बाद है ब्रेक, ब्रेक के बाद एक न्यूज ब्रेक, उसके बाद हम वापस आएंगे आपके साथ, आपके अपने शो में हमारे साथ रहिएगा।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: पीटीआई 12 बसियल जै सबबि लॉन्ग मार्च से मुलतवी किया है। उन्होंने हिम्मत है तो लॉन्ग मार्च कर दिखारे। पीटीआई दहशतगर्दन की सहूलतकार टीटीपी की बी टीम है। केपी जो वो वजीर सूबे जो वो वजीर घट टीटीपी जो कमांडर लगन है। पीटीआई वारा दहशतगर्दन की मजम्मत भी नाहन कंदा। दहशतगर्दन की सहूलतकारी पीटीआई की पॉलिसी है। पीटीआई जो 27 सेप्टेम्बर से इस्लामाबाद में ऐलानियल लॉन्ग मार्च 5 अक्टूबर तक मुलतवी करने का फैसलो। पीटीआई की सियासी कमेटी जो पेशावर में अहम इजलास। लॉन्ग मार्च की तैयारियों हिकमत अमली जो जायजो वरत हो। जरियन जो चवण है तो महमूद खान चकसई अलावा नासिर अब्बास के एतमाद में वठने बाद ऐलान किया वो। केपी के वे वजीर सुहेल आफरीदी है तो लॉन्ग मार्च लाय तैयारियों मुकम्मल हटंदी।

लॉन्ग मार्च ख़त्म करण वारी आहे। केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी चयो आहे त लॉन्ग मार्च बाबति पीटीआई वटि का बि हिकमते अमली न आहे। पीटीआई वारा पाण गिरफ़्तारियूं ॾेई रहिया आहिनि। केपी हुकूमत पुलिस खे टाइगर फोर्स पाइण चाहे थी।

0: फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ए अस्पताल नवाबशाह मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन आवां बे एक दफो आजमाए दिसो चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक बदीन स्टॉप रोड पुरानी सब्जी मंडी एमसीबी बैंक जे सामू नया पुल हैदराबाद वधिक मालूमात जे लाए राप्तो करियो 0306-244-7700
1: कारोबारी
2: सिंध के माथे का झूमर
3: जी एफ एम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: कलाकार खालिक भा तव्हां इहो ॿुधायो त तव्हांजी ज़िंदगानी कीअं हले थी ऐं तव्हां चांहि शांहि पीती आहे कोन पीती आहे घुमण फिरण विया आहियो कोन विया आहियो जुमे जो ॾींहुं आहे यकीनी तौर ते ओताकनि में बि रश हूंदी ऐं दोस्तनि सां उथण विहण बि हूंदो
1: बिल्कुलु ज़रूरु में निमाज़ पढ़ी थी पोइ होटल ते चांहि पीतीसीं वरी घर दोस्तनि सां गॾु आयासीं भाउ मन भाइटा सां हुते बि चांहि गॾु पीतोसीं
0: ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त मौसम जो
1: ॾींहुं तमामु गुज़रियो
0: अच्छा गुड आहे तव्हांजे जलोरी में मौसम थोरो चेंज थिए थो या कोन थो थिए
1: सभिनी वारा मसाला हींअर 20 जी लॻे
0: थी माशाला कहिड़ो गानो ॿुधणु चाहियो था दादा ओके फौजिया सुमरो जो आहे जेको कंहिंजे नाला था करणु चाहियो अच्छा ठीकु आहे थैंक यू ख़ालिक भाउ पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो असांखे दुआउनि में यादि रखिजो थैंक यू सो मच जनाब हमारे साथ थे ख़ालिक भाई और जलूरी से तो ख़ालिक भाई हमारे रेगुलर जो हैं लिस्टनर भी हैं कॉलर भी हैं हमेशा कॉल करते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं लेते हैं शो की एक और कॉल अस्सलाम वालेकुम हेलो जी जनाब आप बिल्कुल हेलो शुक्रिया आपने आवाज़ निकाली अस्सलाम वालेकुम
2: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम अदा केर आहे असां सभिनी सां घर निसार अहमद पिताजी साहब कहिड़ा हाल चाल आहिनि तव्हांजा फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास इहो ॿुधायो तव्हांजो घोट कीअं लॻो पियो आहे सफ़ा टाट माशाला माशाला शींहं जे घोट मां तव्हां असांखे कॉल कई आहे इहो ॿुधायो कहिड़ो कीअं लॻे थो तव्हांखे असांजो प्रोग्राम निसार भाई ॿुधायो कमकार कीअं थो हले तव्हांजो
2: कमकार बि तमामु सुठो थो हले
0: ज़बरदस्त ज़बरदस्त इहो ॿुधायो हाणे फौजिया सुमरो जो गानो ॿुधायां थो तुल उॾारिया जेका मूंखे मूं पखी कंहिंजे लाइ थी
2: वई
0: हा कहिड़ी वकार भाई खे चयो त अॼु मां करे छॾियुमि हा सोना सॉरी निसार भा कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो गानो इहो जेको गानो हलायां थो जी जी बसि थैंक यू निसार भाउ पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो सोनो पिताफ़ी खे तव्हां असांखे कॉल कई आहे मां गानो हलाए चुको आहियां ज़बरदस्त गानो आहे फौजी सुमर जी तमामु घणी ज़बरदस्त वॉइस में त हिन हिट नंबर खे ॿुधो खोड़ सौर एंजॉय कयो ऐं मूंसां गॾु रहो शाम जे 7 बजे ताईं मां हिकिड़ी कॉल बि अटेंड करे छॾियां हैलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केरु असां सभिनी सां गॾु सॉरी तव्हांजो आवाज़ु मूंखे सही न पियो अचे दादा मोहम्मद हाशिम ईंदड़ साहब कहिड़ा हाल चाल आहिनि तव्हांजा सफ़ा मज़े में कमकार कीअं थो लॻा तव्हांजो माशाला ॿिनी ॿारो सभु ख़ैर में आहे ज़बरदस्त हाशिम साहब इहो ॿुधायो फौजिया सुमरो हलाई आहे कंहिंजे नाले करणु चाहियो जी जी जी जी जी जी जी वालेकुम अस्सलाम हाशिम इंदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब हम प्ले करते हैं बहुत प्यारा सा गाना जलूरी से ख़ालिक भाई की फरमाइश पर सुनिए और एंजॉय कीजिए

0: at 6:30 p.m. This time check is
1: Har Din Har Peher Zindagi 88 Network Sindh Ki Awaaz.
2: It's time to commercial break.
3: Ek roza muft chest aur phephdon ki bimariyon ka muft camp. Tarikh 26 September baroz सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लगाया जा रहा है जिसमें शेख सेख अस्पताल लाहौर और पाकिस्तान के आला तालीमी इदारों से तालीम और तरबियत याफ्ता मीरपुर खास के वाहिद चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर गणेश मल खत्री कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन MBBS DTCD MCPS पल्मोनोलॉजी टीबी कोरोना नमूनिया दमा पुरानी खांसी बलगम में खून आना बार बार नजला जुकाम फेफड़ों में फेफड़ों में हवा या पानी भरना फेफड़ों का कैंसर मोटापे की वजह से सांस या नींद में तकलीफ और सिगरेट नोशी से निजात इन तमाम मसाइल वाले मरीजों का मुफ्त मुआयना और इलाज करेंगे और दवाएं भी मुफ्त देंगे नोट डॉक्टर साहब 28 सितंबर से ओपीडी भी करेंगे एड्रेस माय डायग्नोस्टिक क्लिनिक बिल मुकाबिल माई लेब न्यू टाउन मीरपुर खास मजीद मालूम के
4: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ मिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: आप सुन रहे हैं
6: DAFM 88
5: Network, सिंध की आवाज़

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: मौजूद है। टाइम बहुत तेज रफ्तार से गुजर रहा है, हम देर नहीं करते, लेते हैं शो की कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जी जनाब, खैर से सबनी सा गड कुर्बान भाई, तांजी आवाज कट जे थी, केड़ा हाल चाल है तांजा? ठीक ठाक आयो?
1: वा लगी भी अलाय ऐसा रहा वाला तिन तो।
0: हां हां हां, ये आवाज ऐसे तो अच्छा हाल है, ठीक ठाक है वो?
1: अलाय ऐसा ने बाहर की दुआ वो ने।
0: मजे में तांजे जको है गोठ की आ टाटा।
1: वो तो ये भी लगो फिर मस्त है सफा।
0: हां, प्रोग्राम जे एंड में तांजी कॉल लगी, भला छो इतरो ता बिजी होयो छा? जानी कुर्बान कहो गानो बुधा चाहो था? अखरन में पानी, पानी में चाहे समीना कवल आई था है, पर हाँ किंजर लेकर आई हुई मैं तो पर कंजर लाल करना चाहो
1: خالق لاشاری کاٹڑی کا غلام رس پری اسی سلنگی عزیز جروار
0: صحیح
1: مدا پور غلام رہی بلوچ
0: جی جی
1: پیار علی دندو دلیپ کمار جی علی حسن بابو سائیں مدا بھی جتے عرفان بھائی بھی سب نی عرفان تھیرے کے سلام محبت
0: وعلیکم السلام تھینک یو قربان بابا جو خاص خیال رکھو थैंक यू। हमारे साथ बहुत प्यार से कॉलर कुर्बान खास कली भाई, और कुर्बान खास कली भाई के बाद देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है जनाब, लेंगे शो की एक और कॉल। लेकिन आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं जनाब, हमारा नंबर है 03000113488 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ शो में शामिल प्रोग्राम हो सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। लेकिन अब शो को जनाब वाइंड अप करने का टाइम भी आन पहुंचा है, और आप जैसे प्यारे प्यारे लोग जनाब कॉल करने के इंतजार में बैठे हैं कि कॉल करेंगे तो जनाब बिल्कुल अब टाइम बहुत कम है, तो हम क्या करते हैं शो को वाइंड अप करते हैं इसी बात के साथ। मेरे प्यारे प्यारे से दोस्तों के 2 घंटे का खूबसूरत सफर, 2 घंटे का जो ये खूबसूरत सफर अब जो है इख्तिताम की तरफ जा रहा है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, रेडियो प्रोग्राम खत्म हो सकता है, मौसीकी रुक सकती है, आवाज खामोश हो सकती है, लेकिन अच्छी सोच का सफर जारी रहना चाहिए। अपने आप को वक्त दें, अपने वालदैन की कदर करें, दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी तालीम और करियर को संजीदगी से लें, क्योंकि जनाब करियर और तालीम को जब हम संजीदगी से लेंगे तो कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। और हाँ, जिंदगी में जहां भी जाएं अपने साथ अच्छा अखलाक जरूर लेके जाएं। मैं आपका अपना अशफाक नियाज़ी और आप सुन रहे थे GFM 88 सिंध की आवाज से शो आई लव यू ऑल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जनाब मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और हाँ याद रखिए, जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा हमेशा बड़े मौका का इंतजार ना करें। ये मत सोचे कि बड़ा मौका आएगा तो मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा, इसी इंतजार में सारी जिंदगी गुजर जाती है, और बाजू का बड़े बड़े मौके नहीं आते। तो जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा बड़े मौके का इंतजार ना करें, कभी कभी छोटा सा मजबूत कदम ही काफी होता है। तो जनाब GFM 88 आपके दिलों को जोड़ता है, आपके दिलों की आवाज को जोड़ता है, तो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। मैं आपसे चाहता हूँ इजाजत, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे तक मैं आपसे मिलूंगा, और बहुत खूब इंजॉय करेंगे, बातें करेंगे और आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे। तब तक के लिए अशफाक नियाज़ी को दीजिए इजाजत, समीना कमल का गाना लगा चुका हूँ, इस गाने को एंजॉय कीजिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल एंड अल्लाह के बान।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 8 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN.
3: इस्लामाबाद ईंदड़ वेंदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद किया गया. केपीए पंजाब का ईंदड़ वेंदड़ मोटरवे से ट्रैफिक मुअत्तल. अटक पुल के लोही कोका कंटेनर रखी मुकम्मल तौर से बंद किया गया. पंजाब के भी मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स पहुंचाया गया. मुख्तलिफ रोडन के बंद किया वेंदो. न्यूयॉर्क में पाक सऊदी ऐं तुर्किया जे परडे॒ही वज़ीरनि विच में मुलाक़ात बाद चिन्ही मुल्कनि जे आला फ़ौजी सरबराहनि जो इजलास सऊदी अरब में तलब. सऊदी शहरनि ते हमलनि बाद पैदा थियल सूरतहाल ऐं हिकमत अमली ते ग़ौर कयो वेंदो. सऊदी परडे॒ही वज़ारत मूजिबि टिन्ही मुल्कनि जा फ़ौजी अमलदार दिफ़ाई मुआहिदे तहत सऊदी अरब जी मदद करण वारनि तरीक़नि ते ग़ौर कंदा. टिन्ही मुल्कनि जे परडे॒ही वज़ीरनि ख़ते में जटादार अमल लाइ कोशिशूं जारी रखण ते बि इतफ़ाक़ कयो. तुर्क परडे॒ही वज़ीर जो मक्का दिफ़ाई मुआहिदे ते तनक़ीद कंदड़नि खे जवाब. हाकान फिदान अमरीका जे अॻोणे सफ़ीर जेम्स जेफरी खे मुख़ातिब थींदे चयो त गुज़िरियल 50 सालनि दौरान नेटो चार्टर जे इज्तमाही दिफ़ा वारो आर्टिकल 5 गणा भेरा लागू थियो आहे. 50 सालनि जी तारीख़ में आर्टिकल 5 रुगो हिकु भेरो लागू थियो, पर केर बि हुन खे काफ़ी शीन न चई रहियो आहे. नई क़ाइमु थियल दिफ़ाई इतिहाद खां यमन जी 10 सालनि वारी तकरार जो फौरी हल करण जो मुतालबो मुनासिब वारो न आहे.

ऐं पाकिस्तान विच ओपर में अमन वारनि कोशिशनि खे आसान बणाइण लाइ भरपूर किरदार अदा करे रहियो आहे। कारोबार ऐं सीड़पकारी लाइ ख़ते में डिघी मोटे लाइ अमन इंतिहाई अहम आहे। न्यूयॉर्क में सीड़पकारनि खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ चयो आहे त पाकिस्तान जी मईशत मुस्तहकम थियण बाद तरक़ी करे रही आहे। मुल्क में वॾे पैमाने ते सुधारा कया पिया वञनि। मईशत खे डिजिटाइज़ करणु, टेक्नोलॉजी ऐं ई गवर्नेंस ते कम तेज़ी सां जारी आहे। पाकिस्तान वटि ज़राअत, मादनियात ऐं तवानाई समेत केतिरनि ई शोबनि में सीड़पकारी जा मौक़ा मौजूदु आहिनि। बंदरगाह ऐं बहरी जहाज़नि वारी सनअत में बि सीड़पकारी जा

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। It's 8:45 PM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ रही न दूर तड़पायो दिल जी गाल करनी आ रही दुनिया में नाहे सा मोहब्बत आई सचाई लबन ते मुर्खा विखरिल दिलिन में आ बे आई चाहत जा चंग वजायो दिल जी गाल करनी आ चंड ते महफिल सजायो दिल जी गाल करनी आ।

GFM नेटवर्क ऐं दिल जी गाल जे बुधंदड़न सभनी मानतन महबूबन दिलरुबा दोस्तन पिरी प्यारन के वेलकम भलीकार खुशामदी।

नचे थो मोर छो मन में घटा घनघोर आई आ नचे थो मोर छो मन में घटा घनघोर आई आ करे तू ओड़कू आए वरी मु दिल लगाई आ नचे थो मोर छो मन में घटा घनघोर आई आ करे तू ओड़कू आए वरी मु दिल लगाई आ अचन था दूर ता घुंघरू वजे थी विज वांगुर तू अचन था दूर ता घुंघरू वजे थी विज वांगुर तू कई कोयल इए कूकू वरी का याद लाई आ

सरह जी छांव में तोसा मुलाकातियों कयूं जे मां सरह जी छांव में तोसा मुलाकातियों कयूं जे मां ये उजलत नशीनी थी वईयूं जग खां जुदाई या

हरण आयो तराई ते लहे थो सिज लयारन में हरण आयो तराई ते लहे थो सिज लयारन में न धरती ते खुदा तस्वीर भी अहड़ी बनाई

उथो ऐं महकदे वारो रखो ही जाम मुंह पारो उथो ऐं महकदे वारो रखो ही जाम मुंह पारो ॾिसो हू सिज साम्हूं महकदे ते उस आई

इहा का शायरी आहे अटो नाहे लटो नाहे इहा का शायरी आहे अटो नाहे लटो नाहे आयाज इन गाल में आखिर भला कहड़ी भलाई आ नचे थो मोर छो मन में घटा घन घोर आई आ करे तू ओड़कू आए वरी मु दिल लगाई आ

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरर ग्लो. आर्श ब्यूटी क्रीम.
2: ब्रेक का बॉय वापस वरी वरंदा से बुधवार को GFM नेटवर्क.
0: It's 9:30 PM. This time check is brought.

0: ब्रेक डाम भी वेंदा से जी क्या
1: जी अजब ऐं इख़लाक जी आहे असां वटि खाण
0: वाह वाह
1: कंदो हूंदो आहे थमे शान आहे
0: सर अवां जी कॉल कटिजी वई ऐं अवां शिकायतूं बि खोड़ कयूं जी दोस्तों वक्त थियो आहे हिकिड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो ब्रेक खां पोइ वापसि वरी विरंदासीं ॿुधंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज
3: उसी खिप्से की बनी है आवाज
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज सत लगी 30 मिंटन ते सिर्फ जीएफएम

0: प्यार जो कहसा पेच मा पाए बैठो आ प्यार जो कहसा पेच मा पाए बैठो आ पत्थर जे बुत खां आस लगाए बैठो आ प्यार जो कहसा पेच मा पाए बैठो आ पत्थर जे बुत खां आस लगाए बैठो आ हुछा जाने वायदा कसमू रीतू रस्मू हुछा जाने वायदा कसमू रीतू रस्मू मां जंहिंजी खातिर पाण भुलाए वेठो जी दोस्तों प्रोग्राम में कॉल शामिल कंदासीं कॉल लाइन ते मौजूद आहिनि अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां कुर्बान अली ख़ास के लिए
1: जी जी
0: वेलकम बलीगार साईं अलाह जा एहसान लख थोरा थोरो इहो पाण खां रेडियो साइड कजो पहिरां अवांजो आवाज़ ॿुधण पियो अचे रेडियो खां कुर्ब कुर्ब लख थोरा प्रोग्राम कीअं पियो लॻे शायरी अवां सभिनी महबूबनि जी शामिल हूंदी आहे सिंध जे वॾनि नाले वारनि शायरनि जी शायरी शामिल हूंदी आहे असांजो बि हिकु अधु को मिड़ई हुन में को चौसठो या को ग़ज़ल गीत शामिल हूंदो आहे जी बिस्मिल्लाह पिणु शामिल करे सघो था पंहिंजी शायरी या चूंड शायरी वाह वाह वाह वाह लाजवाब सजण मूंखां दूर थी वई अखियुनि खां बि दूर थी वई वाह वाह
1: सजण मूंखां दूर थी वई अखियुनि खां तूं दूर थी वई तोखे चाहे चाहे वक़्तु गुज़री वियो मूंखां तूं हवा वांगुरु हवान वांगुरु विछड़ी मूंखां दूर थी वई मूंखां दूर थी वई
0: तोखे
1: ॾाढो चाहियूं था तोखे ॾाढो भायूं था तोखे ॾाढो चाहियूं था तोखे ॾाढो भायूं था तूं हवा वांगुरु उजड़ी वई मूंखां तूं दूर थी वई अखियुनि खां दूर थी वई मूंखां तूं दूर थी वई तूं दिलबर मुंहिंजो राणो हुई तूं सफ़ा तूं प्यारो हुई तूं ख़ासकेली सां दीवानो उजड़ी वई तूं गुरब में कुर्बान खे हथु छॾाए
0: मूं
1: सां गॾु तूं राहुल में विखामी वई मूंखां तूं दूर थी वई सॼण मूंखां दूर थी वई
0: वाह साईं वाह वाह वाह असल में हिन में जेको आहे न अवां वराए वराए वरजाए काफ़ी रखियो आहे साॻियो पर इहा असल में अवां जी फीलिंग्स आहे अवां जी दिलि जूं ॻाल्हियूं आहिनि ऐं क़दुरु कजे थो अवां जी हिन शइर शायरी जी अवां जे हिन तखयुल जी लाजवाब पहिरां को दोस्तनि जा नाम शामिल करणु चाहींदो
1: अली हसन बाबू ऐं गुलाबी संगत ऐं हुन खां पोइ जेको प्यारो दोस्त हींअर मीराणी दोस्त आहे हुनखे सलाम ऐं जेको तारो ॾाढो मीराणी दोस्त आहे ॾाढो प्यारो आवाज़ हुयो इहो बि हुनखे सलाम मोकिलियो
0: ऐं
1: अल्ताफ़ अॼु साईं कलाम ॿुधायो हिकिड़ो
0: कलाम बिल्कुलु शामिल कंदासीं फरमाइश करे छॾियो जी जी हुकुम कयो
1: असांजो कलाम ॿुधाइजो अॼु चमन वीराणी जो कलाम आहे त हल त हलो यार भई घुमण कचेरे
0: बिल्कुलु दोस्त प्रोग्राम ॿुधंदा रहो प्ले लिस्ट में शामिल कंदासीं अव्हांजी इहा फरमाइश थैंक यू पहिरां कुर्ब ओके लव यू टू जी दोस्तों ॾाढी प्यारी शायरी बि ॿुधण में मिले पई अव्हां सभिनी महबूबनि जूं ऐं ॾाढा अदब शनास दोस्त शामिल थी रहिया आहिनि प्रोग्राम में मां बिल्कुलु मोहतात थी करे हाणे करणु लॻो आहियां प्रोग्राम भुल चुक सनी सुकी का ग़लती उहा थोरो इग्नोर कजो कॉल लाइन ते मौजूदु आहिनि कॉल शामिल कंदासीं अस्सलाम वालेकुम केर साईं किथां खां हलायो कॉल शामिल कोन थी सघी आहे दोस्तों प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि आहे दिलि वारनि लाइ पिणी प्यारनि लाइ अव्हां सां ॻाल्हि ॿोल करे मूंखे बेहद ख़ुशी थींदी आहे न फ़क़ति अव्हां खे मज़ो ईंदो आहे ऐं अव्हां खे ईंदो आहे न ईंदो आहे उन ॻाल्हि जो अव्हां ई जेको आहे त ज़िक्र करे सघो था ऐं मूं जेसीं ताईं पंहिंजे नाक़िस अकल सोच मुताबिक मु सोचो आए तो मुख्य लगी रो आए तो दोस्तों के मजो अची रो आए बाकी हाँ कुछ कुछ अस अवे बिल्कुल पूरे पैरामीटर्स से मेट को भी करे सकंदासे

It's 10 p.m. This time check is from... to you by...